प्यारी पगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है। आज राम जन्म की बधाई है।

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।